0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: एको
0: मुरी बाने मेरे रे
1: दिसना ना काजे रिंदी कारो सी
0: काजे क्लबे
1: एको ना गोंडा को ताशा मोसा का थोड़ी खूम है
0: एको
1: अंदर तो इस तरह रिंदी कारो सी अगर तो दे इन्हों सारी कारो नीन्या
0: एको
1: ना बिया नहीं कारो नीन्या
0: Urakoze cyane Claver.
1: Murakoze namwe.